0: पार्क, घैंडाकोट नगरपालिका कार्य अगाडि, घैंडाकोट 5, मोबाइल 98612204437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: BJ 蛋卷。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।